0: के लिए नहीं आए हैं, अपने अपने
1: ड्यूटी
0: दायित्व को समझो। हमारा दायित्व तो वहां पर जितने भी गांव है, रात को हम लोग उनको अंदर दहशतगर्द जो भी आते थे आतंकवादी, वहां पर हम लोग घूमते फिरते थे, मतलब रात को। दिन में हम लोग जो आप लोग घूमने जाते हो तो साइडों के अंदर फौजी जो खड़े रहते हैं, जिसको आरोपी बोलते हैं, रोड ओपनिंग पोस्ट के ऊपर, जिससे कोई बंदा माइन ना लगाए, कोई आईडी ना लगाए, कोई आतंकवादी आम जनता पर टूरिज्म के ऊपर अटैक ना करे, उनकी देखभाल करने का था। तो वहाँ पर टाइमिंग रहता था, अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे सर्चिंग करते थे, 8 बजे हम लोग उसको कार्रवाई छोड़ते थे। 8 बजे तक हम लोग पूरा देख लेते थे कहीं पर माइन तो नहीं लगाया हुआ। 8 बजे लेकर के शाम को 4 या 5 बजे तक कार्रवाई जाती थी, जैसे 4 बजे तक जाएगी तो, लेकिन हम लोग 5 बजे तक रुकते थे, उसके बाद वहाँ पर बंद हो जाता था। अभी तो फिर भी चालू हो गया, अभी तो दस्तखत कम हो गया। हमारे पास उस समय चरम सीमा पर था। मैं वहाँ की बातें तो देखो, फौज की बहुत लंबी रहती है, मगर मैं शॉर्टकट ये था कि भाई जो रहते रहते वहाँ पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। और हमारे रेजिमेंट का जो एक खुफिया विभाग, जिसको हम रेजिमेंट इंटेलिजेंट सेक्शन बोलते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। काफ़ी महीने तक मैंने उसमें काम किया और उसी वेशभूषा में रहता था। तो उसमें ये फायदा रहा कि लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतरने में अहम रोल अदा किया। तो ये काम चल ही रहे थे तो ऑपरेशन विजय आ गया। ऑपरेशन विजय लड़ने के बाद में ऑपरेशन विजय के अंदर भी ट्रोलिंग की पहाड़ी पर हमारे भंवर सिंह साहब थे, उसको हमने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अमरीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वो भी मेरा एक नारा मशहूर हुआ, ऐसा कौन आदमी है। तो मेरी आप बड़ी बड़ी मुच्छड़ होती थी, मुच्छड़ भी बोलते थे मेरे को कि यार कौन बंदा है जो बोलता है कि राशन नहीं अमरीशन चाहिए। तो बोला मतलब भूखे मारेगा की जनता को। मैंने बोला इतिहास गवाह है, कोई भी भूखा नहीं मरा है, ज़्यादा खा के भले ही मर गया हो। हाँ तो वो था 10,000 घोड़े हमने कारगिल के अंदर दागे थे दुश्मन के ऊपर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले हम लोगों को। कारगिल का जो टाइटल है हर आदमी को नहीं मिला, लड़ाई है तो बहुत फौज ने लड़ी, मगर हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। जैसे आज मेरी रेजिमेंट उस टाइम 1889 लाइट रेजिमेंट थी, आज मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट है, मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। तो पीछे कारगिल का भी लोगों हमको मिला, प्राउडनेस आता है जब इतिहास के पन्नों में हमारे रेजिमेंट का भी नाम लिखा रहता है। और आज भी मैं बड़े गर्व से करता हूँ कि जैसे मैं नायक दीपचंद 1889 में मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, तो एक फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसी बटालियन का मैं हिस्सा रहा हूँ जिसने झंडे गाड़े हैं, मतलब उससे पहले ब्लू स्टार में भी झंडे गाड़े हैं हम लोगों 1987 के अंदर भी, और ब्लू स्टार में नहीं जो ऑपरेशन मेघदूत के अंदर जो सिचिन के अंदर हुआ था वहाँ पर भी हमको एक सेना मेडल मिला, एक मेड इन डिस्पैच मिला। और वहाँ पर भी हमने फायरिंग किया था जिसमें कि बाना पोस्ट जो बाना पोस्ट हैं, जिसमें बाना सिंह साहब को परमवीर चक्र मिला, वहाँ पर भी हमने फायरिंग सपोर्ट किया और युद्ध अभी लड़ा आराम से। तो ये बड़ा एक प्राउड की बात है मेरी यूनिट के लिए कि हमने हर उस मौके पर जहाँ पर देश की जरूरत थी वहाँ पर हम लोग पहुँचे, मतलब। और कारगिल के अंदर भी पहाड़ियों के ऊपर मोटर्स थी जो हमारी बिल्कुल सक्षम थी, और बड़ा प्राउडनेस था हमारी यूनिट के लिए, पूरे देश के लिए, हमारी आर्टिलरी के लिए। और मुझे भी बहुत प्राउड रहता है कि जिस चीज़ के लिए हम एक सैनिक इंतजार करता है वो सपना पूरा हुआ। कारगिल तो एक इतिहास रचने वाली बात है, मतलब। और ये इतिहास तब भी रचा गया कितने हमारे सैनिकों को हमने खो भी दिया है, उनके बिना नहीं रचा जा सकता।
2: 512
0: एक्चुअली में 527 जो अनुष्टम डिक्लेयर किए थे, मगर बाद में 559 हो गए हैं, जिसमें 2 पोर्टर्स थे सिविलियंस और 557 जवान है, क्योंकि कारगिल लड़ाई 26 जुलाई को डिक्लेयर होने के बाद में भी जो पोस्टें बची हुई थी उनको कैप्चर करने के लिए जो 30 अगस्त तक भी जवान जो शहीद हुए हैं, जुलाई अगस्त यानी कि इस महीने तक भी, तब भी उनको कारगिल में ही दिखाया गया है, मतलब। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, ऑपरेशन पराक्रम। उस दौरान हम अनलोडिंग कर रहे थे, अनलोडिंग करते 3 आदमी थे, बक्सा फटता है, बक्सा छोड़ने में फटता तो मेरा हाथ उड़ जाता है। हवलदार जी को पाँव में लगती है, पेट में लगती है, वो गिर जाते हैं, मैं हाथ लेके बैठ जाता हूँ। तब तक मशीन जो काम करना कर देता है, मेरा पूरा पेट फट गया, आंतरिया भार, पाँव में डैमेज, यहाँ इधर उधर सब जगह, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलता जिससे कि बचाओ। तीसरा आदमी लाइन पोजिशन हो गया, हवलदार जी को हॉस्पिटल में उठा के लेके गए, ऑपरेशन चालू। मेरे को 2 बार उठने की कोशिश किया गया मगर नहीं उठा गया। तो मैंने उस टाइम 2 ही चीज़ों का याद आया, एक हनुमान जी का, वो संडे था कि आज के दिन तो मृत्यु नहीं आएगी, दूसरा अपनी धर्मपत्नी का सुशीला देवी का, इतनी जल्दी तो विधवा नहीं हो सकती है। 2 ही पल याद आए, तब तक दूसरे बंदे बचाने के लिए आए तो किसी ने बोल दिया एक बम और फट जाएगा, फिर बंदे भाग गए। मगर एक जेट सिंह जो हमारा SSGD था, काफ़ी गहरा दोस्त था मेरा, उसको जैसे

0: तो उन्होंने बोला कि भैया आप इतने फ्रंकली हो, कुछ बात थी। तो उन्होंने दूसरी लेडीज ने हाथ कर दिया। मैंने सच्चाई कर बहन भाई मानते हो तो सच्चाई बताओ। बोले अभी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई के बाद ठीक ठाक चल रही। बोले कुछ घर का हुआ? बोले क्या हुआ? बोले हम लोग इतने दिनों से हम लोग हर महीने 15,000 रुपये 10,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, 10-15 लेडीजें पिछले 6 महीने से। तो मैंने बोला जिन्होंने मुझे बुलाया वो तो किराया भी बाद में भेजते हैं मेरे को, और इतना तो घोटाला हो रहा। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो फिर मैंने बोला यार मेरे नाम से मुझे बुला करके मेरे को आगे करके अगर आप चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और जवानों की तो हेल्प होती नहीं है, खाली फोटो सेशन हो रहा था। तब फिर मैंने जिसको मैं आइकॉन मानता था आदर्श, तो मेरे लिए आदर्श सैनिक फाउंडेशन का निर्माण किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि आज के देश के लिए कोई आदर्श है तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी सभी महापुरुष हैं, मगर उसका अलग से इसलिए कि जब देश आज़ाद हो रहा था ना तो उसको बोल दिया गया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। आपको मेरे को बोल देना कि आपकी जरूरत नहीं, अगर आप मुझे भी बोल दो तो मैं चला जाऊंगा इधर, जरूरत नहीं है तो चले जाओ। लेकिन उनके अंदर इतनी देशभक्ति थी, बाहर गए, बाहर जाने के बाद में भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया देश के लिए और जय हिंद का नारा अपने देश को दिया। जो आज भारतीय सेना जय हिंद बोल रही है वो नेताजी के कारण ही बोल रही है। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो बंदा देश के प्रति इतना कुछ कर सकता है, उसी के नाम से मैंने आदर्श सैनिक फाउंडेशन का निर्माण किया। और जैसे मेरे जैसे मैं आपको सबको बोलता हूँ, जैसे कोई भी क्लब है, रोटरी है, लाइन्स क्लब है, जब बाकी हैं या कोई भी संस्था है, अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट तो हमारी हेल्प करती ही करती है, मगर उसमें डिले भी हो जाता है गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऊपर लेवल तक बात नहीं पहुँचती, नीचे लेवल में हम दबके रहते हैं कुछ बातें। और जब कुछ बता दो तो जैसे सपोज करो मैंने आज मुँह खोल दिया तो बोलेंगे तुमको ही प्रॉब्लम, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल पता पीड़ा होती जिसको वही बोलता है। तो मैं चाहता था कि भाई एक जैसे आप है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हैंडीकैप आदमी हैं, उनको कम से कम एक व्हील चेयर दे दी जाए, अच्छे वाली व्हील चेयर। एक तो दिखावे के लिए दे देते हैं व्हील चेयर जो महीने दो महीने में फोटो ताले टूट जाती है, एक ऑटोमेटिक जिसको मतलब मेरा है कि कोई भी साधन को स्कूटी दे दी जाए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जैसे अपना रोजमर्रा का काम, जिससे कि हेल्प हो चुके। तो मैंने वो लक्ष्य करके सोचा और उसी हिसाब से आदर्श सैनिक फाउंडेशन का निर्माण किया। किसी बच्चे की फीस की प्रॉब्लम है तो आप जैसे बंदों को मैं बोल देता हूँ सर उस बच्चे की अगर फीस भरी जाए तो पारदर्शी ये होता है कि जैसे मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ सर वो सैनिक है उसका बेटा वहाँ पर पढ़ रहा है, कुछ जरूरी नहीं कि आप मुझे ही फीस दो या मेरे थ्रू काम करो, आप डायरेक्ट भी भर दोगे तो हमारा लक्ष्य क्या है कि काम से मतलब होना चाहिए। पेट भरने से मतलब है रोटी चाहे इधर से खाओ या उधर से खाओ, ये नहीं कि सर आप ही खिलाओ, नहीं। तो मेरा एक लक्ष्य ये है कि आप कुछ ना कुछ करिए, मतलब अपने तरफ से। हम सैनिक है सर, इस राष्ट्र के लिए वर्दी पहनी है, देने के लिए पहनी, लेने के लिए पहनी। आज भी भले ही मेरी कंडीशन ऐसी है मगर आज भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम सैनिक हैं, कट्टरवादी है। हमने ऐसा नहीं कि किसी को कंडीशन देख करके किसी को बोले सर हमारे लिए करो, नहीं, देश ने करना चाहिए, अपने आप ही करना चाहिए। जैसे वीर नारियाँ हैं, अभी हर आदमी युद्ध में घायल नहीं होता सर, अभी आपने अभी भी देखा एक गाड़ी पलटी होगी सर, उसको युद्ध युद्ध की स्थिति वाला फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती सर। युद्ध में बंदा जाता है, आज उसको किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को गैस एजेंसी मिल जाती है, मगर हर आदमी को ये नहीं मिलता है। तो कई कई बार दो दो तीन तीन बच्चे हैं, और जब नया नया केस होता है तो हर आदमी आता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे आप देखते हो कोई शहीद आता है तो झंडे डंडे लेके आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, बोली लगाते हैं, मगर उसके साथ में बात करने वाला कोई नहीं रहता, बाद में वो घूमते रहते हैं। तो फिर मैंने एक निर्माण किया कि जो हमारे शहीद सैनिक हो रहे हैं उनकी स्मारक के ऊपर एक तो तिरंगा लगाया मैंने, अभी नासिक में शुरुआत किया मैंने, 6-7 तिरंगे मैंने लगा दिए 60-60 फीट के, इसी के माध्यम से जो चैरिटेबल करके, और जो चैरिटेबल करता हूँ उनको भी बुलाता हूँ कि आप आइए जो भी आप काम कर रहे हैं देखिए आप, मतलब, और साथ में जिसका भी हेल्प होता है, जैसे एक दो वीर नारी थी उनके बच्चों का फीस वगैरह किसी के थ्रू भरा, जैसे हमारी एक मेघना गिरीश मैम हैं जो कि हमारे अक्षय गिरीश की माता जी हैं जो बेंगलोर में ही रहती हैं, उनका एक बेटा इकलौता चला गया, लेकिन आज भी उनके अंदर देश के प्रति इतना है कि वो जो हमारे जैसे सैनिक है या वीर नारियां हैं उनकी हेल्प करती है। तो ऐसे कम ही आदमी मिलेंगे। तुषार महाजन अंकल हैं जो कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरासब के थे, उनके माता जी पिताजी हैं। तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो ऑफिसर रैंक में थे जो आज भी चैरिटेबल करते हैं,
1: करते करते
0: हाँ, तो उनके उनके लिए
1: देखता हूँ।
0: हाँ, तो मैं झूठ के बोलूँ आपसे, सही बता रहा हूँ आपको,
1: नहीं, मैं देखा
0: तो वो भी मेरे को बोले देवचंद भाई कुछ भी हेल्प होती, जैसे मेघना गिरीश आंटी है वो बोलती कि वो कभी भी, मैं तो आंटी बोलता हूँ उनको, लेकिन वो कभी मेरे को दीपचंद जी ही बोलती है, वो बोलती आप सैनिक हो और आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, एज ए रिस्पेक्टेड बोलते हैं। मैं बोला नहीं आप बड़े हो, बोलती बड़े छोटे की बात नहीं होती, आज भी मैं बात करता हूँ तो यही बोलेगी मेरे को दीपचंद जी आप बताइए। तो वो भी बड़ा अच्छा काम करती है, हमारे वार विंडर फाउंडेशन को उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो ऐसे परिवार हैं आज भी जिन जो आज भी हमारे जैसे सैनिकों और वीरांगनाओं को देखते हैं, काफ़ी परिवारों को इकट्ठा करके घुमाते हैं ताकि अंदर ही घुटे घुटे। तो वो चीज़ें

0: ये उनको उनसे उन जैसों से मैं भी हेल्प लेता हूँ, और आप जैसे के माध्यम से ये संस्था आगे कार्य कर रही है, और कार्य करने के बाद में काम चल रहा है सर इस चीज़ के लिए।
1: तो ठीक है सर जी, आपका जो सोशल वर्क कर रहे हैं, आपका आदर्श सैनिक फाउंडेशन की तरफ से वो काफ़ी अच्छा काम है, तुम्बा वाले कैल्सा मारता इधर है, और वो आगे बढ़ता रहें, जितना हो सके तो उतना हम भी हेल्प करेंगे, और सभी को आपको हेल्प करने के लिए पूछेंगे। और आपने वो आपका गाड़ी है उसमें आप द्रास या चिन और गलवान तक आप भावनात्मक यात्रा किया है, अनुभव कैसा था और वहाँ पहुँचकर आपको कैसा महसूस हुआ?
0: मेरा सपना था कि मैं 25 साल हो जाएंगी तो मैं मेरे उन भाइयों को श्रद्धांजलि दूंगा कारगिल विजय दिवस की। तो मैं मेरी स्कूटी के ऊपर ट्रायल मारता था हर रोज़ 200-300 किलोमीटर मेरी वाइफ को बिठा करके। तो एक बार हम लोग फ्लाइट में आ रहे हैं, और एक महानुभव शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, गिरीश पाटिल जो मिलते हैं मुझे, और वो बोलते हैं कि दीपचंद जी, मैंने पूछा उनको, सर आप वीडियो बना रहे हैं, आपका नाम बल्ले दीपचंद जी, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं उत्साह हो गया, तो उन्होंने बताया कि मैं केसरी टूर एंड ट्रैवल। तो मैंने बोला सर संगीता मैडम को, उनकी वाइफ को जानता था, मैंने बोला संगीता मैडम, उन्होंने बोला मेरी वाइफ है, तो और भी मालूम हो गया। तो मैंने बोला सर, तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, मैंने बोला सर मैं स्कूटी पर ट्रायल मार रहा हूँ। बोला स्कूटी पर? बोले हाँ। तो बोले कि स्कूटी पर ट्रायल मार रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि सर स्कूटी पर। बोला मैंने सर जो संसाधन उसी में जवान जाता है। तो उन्होंने बोला गाड़ी चला लो, मैं सर मौका मिले तो हवाई जहाज चला लें मतलब। तो बोले कुछ ज़्यादा नहीं होगा? मैंने बोला सर कट्टरपंथी आदमी हूँ, मैंने टांगे भी एक छोटे से लेकर के बड़ी तक पहन के देखी और सब कुछ एक्सपीरियंस है, मौका मिलेगा। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला नंबर दो, अपना नंबर दिया। एक डेढ़ महीने बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, गाड़ी है भिजवाऊँ? भिजवाया, और फिर मैंने मॉडिफिकेशन कराया। जिससे मॉडिफिकेशन कराया वो भामरे जी हैं जो एयरपोर्ट पर ही अपना एचएल में काम करते हैं जहाज़ों का ही, तो उससे करवा। तो उन्होंने करा करके, बड़ी गाड़ी थी क्योंकि बंदा एक स्कूटरी से सीधा 7 सीटर के ऊपर आ गया। तो मैं गाड़ी चलाई 2 किलोमीटर में, तो 30 मिनट के अंदर चक्कर लगा। तो भामरे जी बोले, मैंने बोला बोला मुश्किल है सर। तो मैंने उसको बोला 8 दिन का टाइम दो, मैं 8 दिन बाद आता हूँ। घर पर आ गए, बेटे को मैंने बोला कि ये घर पर लेके चलो, घर पर लेके। तो वाइफ को रात को बोलता था, हमारा एयरफोर्स का एक रोड खाली रहता है तो खाली हैंड ब्रेक पर हाथ रखना। तो 8 दिन मैंने ट्राई मारा सर, और 8वें दिन भामरे जी के पास वापस गया और बोला कहाँ पर जाना है, तो वही जगह बोला उसने। बोला रोड पर तो कोई भी चला लेगा, जो आधे घंटे का टाइमिंग था वो मैंने 2 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा किया। तो भामरे जी भी मेरे को बिल्कुल नमन किया, पाँव को बोला सर मान गया आपको। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया सर और प्रॉपर चला करके, और उसके बाद जो मेरा लक्ष्य था, टारगेट था मेरा कि कारगिल में जाना, तो मैंने द्रास सेचिन ग्लेशियर तक का युद्ध की शुरुआत किया देवलाली से। तो देवलाली से मैंने शुरुआत किया पूजा पाठ करके, सभी जितने भी हमारे धर्म है, चाहे उज्जैन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर, सबसे आशीर्वाद लेके सब ऋषियों का। और मैं सीधा गया, और 26 दिन के अंदर मैंने तुरतुक, चेचन ग्लेशियर, बेस कैंप 1, 18,000 की हाइट, खुरदुंगला, लेह लद्दाख, दिल्ली का वार मेमोरियल, ये सबसे शुरुआत किया। रस्ते में जितने भी हमारे जवान थे उनके घरों पर गया, उनको एक मोमेंट ऑफ जैसे बंधु ने दिया था वो दिया, एक ट्रॉफी दिया, एक दीपक था वो भी दिया, वो आपके लिए भी लेके आया हूँ, वो आपको भी दूंगा मैं। तो वो चीज़ें एक भावनात्मक भी थी, किसी ने पेट्रोल की हेल्प किया सर। तो 26 दिन में 7,000 किलोमीटर मैंने खुद से गाड़ी चलाई सर मैंने वो।
1: ग्रेट।
0: तो रिकॉर्ड है, अभी सोचते हो कि हम, क्योंकि सैनिक जो काम करते कोई रिकॉर्ड के लिए करते, बहुत आदमी बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना था, ये करना था। मैंने बोला सर किसी को दिखाना नहीं था, अपनी आत्मा था कि मैंने मेरे दोस्तों के लिए कुछ किया है। तो वहाँ पर फिर मैं पहुँचा और वहाँ पर श्रद्धांजलि दिया। और मेरा खुद का लक्ष्य है सर कि कभी भी जीवन में, चाहे मतलब कंडीशन कैसी भी हो आपकी, जैसे मैंने आपको बोला ना हेलीकॉप्टर की, तो मेरा खुद का एक सपना है कि जब संसार को छोड़ो ना, उससे पहले मैं हेलीकॉप्टर जरूर उड़ा के दिखाऊं। क्योंकि इस देश को देखना चाहिए कि भाई, जैसे दिव्यांग आदमी, मैंने बोला ना आपको कि हर आदमी सोचता कि यार इसके हाथ पाँव नहीं है, थी मैं नहीं। तो मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि आदमी शरीर से भला कितना भी दिव्यांग हो, मानसिक दिव्यांग नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत से आदमी मानसिक दिव्यांग है, अपने पास बहुत कुछ होते हुए उदास रहते हैं मतलब। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मुझसे मिला करो तुम लोग, किसी को कोई बीमारी है तो मुझसे बात करो, मैं ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम आइए मेरे को, खाना पीना क्या खाना मुझे बताइए, मैं कुकिंग भी करता हूँ और सब कुछ काम करता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और सब काम करने के बावजूद सबसे पहले भगवान ने मुझे जो गॉड गिफ्ट, ये मुस्कुराहट और ये खुशी दिया है, वो अलग है मतलब। क्योंकि बाकी के पास सब कुछ हो सकता है, मगर एक नेचुरल है कि अंदरूनी, जैसे इस कंडीशन के अंदर हर आदमी नहीं उभर सकता है, अगर मुझे एक भगवान ने आशीर्वाद दिया कुछ कुछ करना है मतलब, और आज मेरा लक्ष्य वही है इस गाड़ी के माध्यम से ही कि मैं उन शहीद परिवारों के पास जाऊं, उन जो भी हमारे स्मारक बने हुए हैं देश के अंदर वो दिखना चाहिए ना सर। अभी जैसे आपने हमें बुलाया, एक सैनिक की कहानी दिखाई, तो ऐसे ही हर सैनिक की कहानी दिखाएंगे, जैसे आज हमारे पास हम कर्नाटका में अब बात कर रहे हैं आपसे, तो आपसे मौका से बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि यहाँ पर कर्नाटका में भी हमारे साथ में रमप्पा थे, नगप्पा थे, काफ़ी हमारे सैनिक जो आज भी हमारे सीनियर थे, कोई हमारे जूनियर भी थे, तो आज भी देखो मैंने बोला ना आपको कि हर प्रांत के अंदर सैनिक है, वो अपना देश के लिए सब कुछ करके आया, वो बेचारे घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज हमको क्या रहता है कि एक दीपक शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, बस शहीद होना ही जरूरी ना, जो बंदे जिंदा हैं या दिव्यांग है उनको भी तो वो सम्मान मिलना चाहिए ना, उनके साथ साथ मानता हूँ उनका बलिदान है, मगर उनके साथ में जो बंदे उनकी क्या गलती है, जो ठीक ठाक आगे जंग तो उन्होंने भी लड़ी है, मगर हमारा नज़रिया उनको देखने का अलग हो जाता है। तो मेरा यही है कि जो भी हम कार्य करें तो छोटा करें चाहे बड़ा करें, जैसे आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आप कोई भी कार्यक्रम हम सैनिकों को बुलाते हैं, क्योंकि प्रथम गोली खाते हैं तो रिबन काटने के लिए आप जैसे कमी आदमी है जो बुलाते हैं मतलब, तो ऐसे ही एक हर आदमी को सीख मिलनी चाहिए कि नहीं, जब हमारा जवान हमारे लिए निस्वार्थ वादियों में खड़ा रहता है, क्योंकि देश का भविष्य जो बोलते हैं, देश की आने वाली जनरेशन जो बोलते हैं, वो भारतीय सेना ही है। अब सोचिए सैनिक क्या नहीं करता है, सैनिक बैंड बजा सकता है, सैनिक झाड़ू मारता है, सैनिक खाना बनाता है, सैनिक राइफल करता है, ऑलराउंडर है सैनिक, तो क्या कमी आप कभी वो और निस्वार्थ करता है। अपने यहाँ तो एक सफाई वाले को हम उस नजर से देखते हैं कि नहीं नहीं यार ये सफाई वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है। और आज भले ही मैं आपको एक लास्ट में एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो अगर आप लोग लेंगे तो, कि चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है, और मुझे हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी।
1: थैंक यू दीपचंद जी, आप नासिक से यहाँ तक आकर हमारा FM 90.8 में आप आकर आपका मन में जो भावना थी वो सब हमारे साथ शेयर किया है, और हमारा सभी लोगों के तरफ से और हमारा स्टाफ के तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका जो आदर्श सैनिक फाउंडेशन है उसका फाउंडेशन के तरफ से जितना हो सके तो उतना सैनिकों को और वीर नारियों को जो होगा वो आप करते रहिए, भगवान आपका भला करे, उसके प्रार्थना करते हुए आपको हमारा तरफ से शुभकामनाएं है। जय हिंद, थैंक यू।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम।
2: ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿರುವ ಶೌರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನಾಯಕ್ ದೀಪ್ಚಂದ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ವಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ ಯೋಧ ನಾಯಕ್ ದೀಪ್ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ, ರಾಜೇಶ್ ವಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಎಂದಿನಂತೆ ರೇಡಿಯೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. ಕೇಳ್ತಾರಿ ರೇಡಿಯೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 90.8 FM ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ, ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾನುಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.

0: भूल गए
1: जान मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाल
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम।

चंदन झूला चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चमचमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाल
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम।